0: ओके जी, टांग से नरगिस और गुलाले हसाम भाई, सलाम। टांग में रात को जबरदस्त बारिश, मौसम ठंडा हो गया है और सब मांग रहे हैं इज्ना की बेबी प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नरगिस सिस्टर, अल्लाह आपको खुश रखे इंशाल्लाह। इंतहाब जरूर करेंगे हम सब इज्ना का, और आप भी करेंगे, और बिल्कुल जी आप भी फाइंदाबाद। कुकु भाई सिंह गए, और बिल्कुल जी ठीक ठाक ये मत तासु सरेंगे तासु शाये। ओके जी, शीन असमान सरी सरी। अस्सलाम वालेकुम करे शेबास ने अब्दुल हादी भाई स्टडे मुशी अमु शुम ब्रिया मौरू आसरी में उलगाबा ओ खना आवाज थी वही ओके दे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अब्दुल हादी साहब। मन ने स्टडे मुशाई बखेर वाली मुशम खदाई नुजी बिल्कुल सिफर 335 यानी सिफर द्वपेरी द्रीपिंज सलूर द्रीपिंज द्रीपिंज यो पिंज अक्सर मुख्तल कोई तासु नंबर डी ज्यादा स्वाइन उन्हें दर्थवाई में ब्याह दर्थवाई में उजल वो गोले तासु नहीं से सिफर 335 435 35 15 सिफर द्वपेरी द्री पिंज सलूर द्री पिंज यो पिंज वानी राशि मुक्त प्रोग्राम की कॉल उखे और मैसेज उखे। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: आज ही दस्त प्रोग्राम के हर के लिए स्टडी मुशी पखेर आली मास रसूख उदे चरदाना
1: सर दीजी जनुमान खबर कम ले ले आबाद
0: अनुमान से तासुता द इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के हर के लिए स्टडी मुशी वाय मा
1: खैर दी सर जी
0: अड्डी रजा था मनन नोबान चिराले ले अमु सरे प्रोग्राम के बरखा वागी सलाम
1: सर जी मा सला प्रोग्राम डेर मगर आ कई
0: डी रजा था मनन शुक्रिया
1: मुझे खो देता प्रोग्राम स्पेशल आर वो लग आयो खबर पर कबूल लग आयो खुदा प्रोग्राम मो ब्याह लग वाला है
0: मनन औसंग जमुंग दो इजना आई जेड एन ए इजना अलीफ अजीज रिजुन जरदा इजना कॉस्मेटिक इंतहा मुकड़े कने मुदे कड़ा
1: जी जी कड़े मुदे सर जी माशाल्लाह सा गायता
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह और डेरा मनन जी डेरा मनन शुक्रिया
1: ओके ओके
0: ओके जी जान ख्याल साथ डेरा मनन नोमान चिराली प्रोग्राम के बरखवाग सलाम ओके लाफेस लाफेस अस्सलामु अलैकुम हसाम सिंह के प्रोग्राम मौसम खैसा रवान दे माशाल्लाह और आवाज मुहम सफा रारवान दे मलिका हान यम दे ठांग डेर छात मनन शुक्रिया मलिका अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम सरंग ऐसे जुड़े बराबर
0: है आज बिल्कुल जी शैम जोड़ी हम बराबर है मुझ रसू खबर क्यों दे चरदना
2: زایم د ټانک نا عبدالرزاق خبرې کوم
0: د ټانک نا عبدالرزاق خبرې گئی عبدالرزاق د ازنا پروگرام کې ته هر کله ستړي مشي په خیرالي وایمه
2: پخې
0: اسما پرو موږ استعمال کړی دی په زتا ته ما تا کوم پروگرام ته کال کړي تا د ازنا پروگرام ته کال کړي صحیح ده صحیح شو
2: صحیح شو
0: ओके जी कलो हम तासो लग पता नहीं लगी लग दे आवाज तक वक दे खा चिर आवाज दे चाह दे

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
5: पाकिस्तान जिंदाबाद। इश्मा कॉस्मेटिक्स पाइंदाबाद।

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सॉप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome. A very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegham 97.4 Pahadpur, Global FM 91, Dera Ismail Khan, and Radio Aman 88.4 Dance. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान के। जी जनाब, केसन वो कंपनी जो आपके लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आपके हुस्न को निखारने के लिए, आपको सेहतमंद बनाने के लिए, आपकी खूबसूरतियों में इजाफा करने के लिए।

जी जनाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं और 4:06-7 हो जाते हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। 3 स्टेशन एक साथ होते हैं तो तीनों को लाइनअप करते हुए जनाब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और तीनों स्टेशन से कम्युनिकेशन करते हुए ठीक है जनाब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कभी किसी चैनल के ऊपर डिले हो रहा होता है। तो आज इस वक्त जो है डेयर इस्माइल खान के लोग हमें लाइव नहीं सुन पा रहे, तो उस वजह से जो है 6-7 जो है हमारे डिले हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि तीनों स्टेशन को लाइन अप करना होता है। एनीहाउ जनाब 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही जनाब आप लोगों की खिदमत में हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं जो कि केसन का टी टाइम शो। टी टाइम शो का मतलब है चाय का वक्त जी जनाब, और चाय गर्मियों में तो इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब गर्मियों के अंदर ऐसा मौसम आ जाए, स्पेशली बारिश वगैरह आ जाए, क्योंकि जनाब बारिश का ताल्लुक जो है ना वो चाय के साथ बड़ा गहरा है, और बारिश का ताल्लुक जो है यादों के साथ भी बहुत ही गहरा है। और सावन की बारिशें, सावन का महीना जब भी आता है जनाब, तो बहुत सारे लोगों को माजी के अंदर लेके जाता है, बहुत सारे लोगों की मौसम, अच्छा मौसम जो होता है ना वो फिर आपको मुस्तकबिल की फिक्र से आजाद करके आपको किसी और दुनिया में लेके जाता है। लेकिन आप इस बारिश को देखते हुए आपको बचपन भी माइंड के अंदर आ रहा होगा, कभी जो है वो छत के ऊपर जाके बारिश में नहाना है जनाब, गली में निकल जाना, सहन में नहाना है जनाब, और साथ साथ में जनाब वो कागज की किश्तियां बनाकर जी बिल्कुल जी सहन के अंदर छोड़ देना। यानी कि ये मौसम जो होता है, बेसिकली जो सावन का मौसम होता है, बारिश जो होती है, बारिश की बूंदे, बारिश की जमीन पे पड़ने वाली बूंदे और फिर उनसे निकलने वाली खुशबू जो है जनाब महका देती है सबको, और आपके मूड भी तरोताजा हो जाते हैं। तो जनाब सावन का महीना और बारिशों का महीना, जैसे कि कल भी आप लोगों को बताया था कि जनाब ये जो 10 है, ये जो अशरा है बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये अशरा चलेगा हमारे लिए, क्योंकि जनाब इसके अंदर 3-4 स्पेल हैं बारिशों के। ठीक है जनाब, 2 बारिशें जो है हम 21-22 के अंदर जो है, यानी कि कल से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, और कल की सुबह भी आप जब उठे होंगे तो बारिश का पानी जनाब आपके सहन के अंदर ठहरा हुआ बता रहा होगा कि जनाब बारिश हुई रात और आज सुबह भी। तो जनाब उम्मीद यही है, मौसम की पेशन गोई तो यही है कि जनाब 31 मार्च तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, और गर्मी की जो तेजी थी, जो तरारी थी या तपिश थी, वो खत्म हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया, और खुशगवार मौसम का फायदा उठाइए। आज जनाब दूध से बनी हुई दूध पत्ती पीजिए, साथ में इलायची भी शामिल कीजिए, और अगर आपके घर में अवेलेबल है दूध के ऊपर बलाई तो वो कप में डाल के एंजॉय कीजिए। फिर बताइए कि ये इलायची और बलाई का, मलाई का जो आपस में इम्तिजाज है, उसने आपको कितना हाँ जी खूबसूरत बना दिया आपके लम्हों को, और इस सावन को और कितना हसीन बना दिया।

जी जनाब, मजा मुझे नहीं आ रहा कि डियर इस्माइल खान हमारे साथ जो है, हमारे न्यू प्रोडक्ट है और न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और हमारे साथ इश्यूज जो है डियर इस्माइल खान में चल रहे हैं। तो भाई कौन ड्यूटी ऑफिसर हैं भाई, पहले से काइंडली अपने फेसबुक को, अपने कॉन्टेक्ट्स को ओके करके बैठा करें, फिर शो के दौरान आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, मेरी भी जो है तवज्जो कभी किधर चली जाती है कभी किधर चली जाती है। तो काइंडली जो है जो भी ड्यूटी ऑफिसर हैं भाई, टाइमली मैं डियर इस्माइल खान से मुखातिब हूँ। ठीक है जनाब, टाइमली हमें ऑन एयर कर दिया करें। हमारे लिसनर डियर इस्माइल खान में जो है वो भी इंतजार में बैठे होंगे कि कैसे, जैसे ही 4 बजते हैं तो उनका अपना फेवरेट प्रोग्राम किसन टी टाइम शुरू होते हैं। आओ देखते हैं क्या चलता है आगे। ठीक है जनाब, क्या हम लाइव हो पाते हैं इस घंटे के दौरान डियर इस्माइल खान में या नहीं हो पाते? सामिन इकराम, केसन नेचुरल पाकिस्तान भरपूर जिंदगी का ताल्लुक जो है, खूबसूरत जिंदगी का ताल्लुक जो है वो सेहत के साथ होता है, और इसलिए कहते हैं कि सेहत है तो जिंदगी है, हाँ जी ना, जान है तो जहान है, क्या समझे?

0: मेरी जान।
1: जी जनाब, कल आप लोगों के साथ बहुत सारी डिस्कशन हुई हमारी कि इंसान, बहुत सारे लोग हमारे माशरे के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर कमजोर क्यों रह जाते हैं। जिस्मानी कमजोरी, जहनी कमजोरी, असाबी कमजोरी का सामना उनको क्यों करना पड़ता है, वो आपके साथ कल हमने बड़ा डीपली जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि कौन सी गिजाएं हैं जो आपकी गिजा के अंदर, रोजाना की आपकी जो गिजा है उसके अंदर शामिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप कमजोर रह जाते हैं। सामने के हम जैसे ही कोई कमजोर होता है, चाहे वो उम्र के आखिरी हिस्से में हो, 50-60 को क्रॉस कर चुका हो और उसे मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियों का सामना आन पड़ा हो, ठीक है जनाब, उसमें हड्डियों की कमजोरी है, उसमें पट्ठों की कमजोरी है, उसमें जिस्मानी कमजोरी है, उसमें दिमागी कमजोरी है, असाबी कमजोरी है, सारी कमजोरियां एक साथ हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है अपनी लाइफ के मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए, फेजेस से गुजरते हुए भी कमजोरी का उनको सामना होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है जनाब, और रातों को देर देर तक पढ़ना, और फिर उनकी जो खुराक होती है वो उस लेवल की नहीं होती, यानी कि वो जितनी एनर्जी जला रहे होते हैं ना, जितनी एनर्जी, यानी कि जलाने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बैठा है, स्टडी कर रहा है, तो वो ऐसे स्टडी नहीं कर रहा है, वो अपने जिस्म, जैसे हम मोटरसाइकिल पर या गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो कुछ जलता है तभी तो हम आगे चलते हैं ना, ठीक है ना। अब डीजल है या पेट्रोल है, वो जलेगा तभी कुछ के अंदर एनर्जी आएगी, गाड़ी है, बाइक है, बड़ी गाड़ियां, जो चीज भी है, यानी कि ये फ्यूल होता है ना, फ्यूल जलता है तभी जाके जिंदगी आगे चलती है। इंसान का भी इसी तरीके से है, ठीक है ना। अब इंसान के अंदर जो एनर्जी है, जो हम चीजें खाते हैं, वो एनर्जी की सूरत में, एटीपीस की सूरत में आपकी बॉडी में मौजूद होती है, और वो काम करने के लिए, यानी कि ये ताकत आपके लिए मौजूद होती है, आप काम करते हैं, ठीक है जनाब, काम करते हैं तो वो आपकी तवानाई जो होती है वो सर्फ होती है, ठीक है जनाब। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास एटीपीस तो आपके पास कैलोरीज तो कम है, लेकिन आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप पूरी रात पढ़ने के लिए बैठते हैं, या आप कोई काम ऐसे करते हैं कि आप अपनी खुराक से ज्यादा काम करते हैं, यानी कि आपके पास जितना फ्यूल मौजूद है आपके बॉडी के अंदर, जितनी एनर्जी पैदा करने के लिए, एनर्जी यूज करने की आपके पास कैपेसिटी है, आप उससे ज्यादा जब काम करते हैं तो कमजोरी आपके जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है जनाब, आपकी खुराक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, आप ज्यादा जो है काम कर रहे हैं, हालांकि एनर्जी आपके अंदर उतनी नहीं है, तो फिर आपको कमजोरी का सामना रहता है। बहुत सारी वजूहात कमजोरी की और भी बहुत सारी होती है, ठीक है जनाब। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अक्सर हम लोग क्या करते हैं जनाब, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जनाब हमारे अम्मी अब्बू हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ताया ताई हैं, इनको भाई ताकत वाली ड्रिप लगाते हैं। अच्छा जी, मैं नहीं कहता कि ताकत वाली ड्रिप नहीं लगानी चाहिए, मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ कि भाई ये जो ताकत की ड्रिपें होती हैं, ये ताकत के इंजेक्शन होते हैं, ये ताकत के सिरप होते हैं, ये ताकत की गोलियां होती है, बेसिकली इन सब का काम क्या होता है, इनके अंदर होता क्या है, मैं आपको ये कहानी आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ताकत के नैरोबियान आपको इंजेक्शन मिलते हैं, मिथाइल कोबालामीन, मैथिकोबाल के नाम से आपको इंजेक्शन मिलते हैं, मल्टीबियोंटा ये एक इंजेक्शन होता है, ठीक है जनाब, इसके अंदर, इसके अलावा ऑसनेट डी कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं, कैल्शियम पी सिरप है, इसी तरीके से लाइसोवेट सिरप है, इसी तरीके से लेडरप्लेक्स, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर एकदम से जान आ जाती है। तो जनाब ये जितने भी ताकत की चीजें हैं, चाहे आप ड्रिप लगाएं, चाहे आप इंजेक्शन लगाएं, चाहे आप ताकत की गोलियां खाएं, चाहे आप ताकत के सिरप पिए, चाहे आप ताकत के कैप्सूल खाएं, उन सब के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है जनाब। इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और ये जब आप पीते हैं, लेते हैं, खाते हैं, तो वही विटामिन्स जो है आपके बॉडी के अंदर पहुंचकर आपको जो है एनर्जेटिक कर देते हैं, आपकी कमजोरी को खत्म कर देते हैं, आपकी थकान को खत्म कर देते हैं, आपकी सुस्ती को खत्म कर देते हैं। लेकिन होता क्या है इनके अंदर, इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से विटामिन्स जो आपको सेहतमंद रखते हैं, जो आपकी सेहत को बनाते हैं,

जी जनाब, ये विटामिन जब आपके जिस्म में जाते हैं तो जान से आ जाती है। बुखार में आपने एक डेढ़ महीना गुजार लिया, हफ्ता गुजार लिया, कमजोरी नकाहत आ जाती है। लेकिन जब वो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ये विटामिन आपके खुलियात को बना देते हैं, नए खुलियात बनते हैं और मेटाबॉलिज्म आपका सही होता है और फिर से आप सेहतमंद हो जाते हैं। अब कौन से विटामिन होते हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे आपकी कमजोरी खत्म हो जाती है? तो प्रायोरिटी के ऊपर नंबर वन जो विटामिन फैमिली है ना, वो बी कम्प्लेक्स फैमिली है। B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है जनाब, इसको इसको कहा जाता है बी कम्प्लेक्स। ठीक है जनाब, आप देखें विटामिन ई सिर्फ विटामिन ई होता है, विटामिन सी सिर्फ विटामिन सी होता है, विटामिन डी सिर्फ विटामिन डी होता है, विटामिन ए सिर्फ विटामिन ए होता है, विटामिन के सिर्फ विटामिन के होते हैं, उनके साथ K1, K2 नहीं है, C1, C2 नहीं है, D1, D2 नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनके साथ, वो चूंकि अलोन है तो उनको कम्प्लेक्स नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो फैमिली है विटामिन B3 की, ये बहुत ही काबिल फैमिली है, B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है जनाब। और ये जब आप लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। अब वो चीज़ें, ठीक है जनाब, ये बहुत ज़रूरी है आपके जिस्म को ताकत देने के लिए। दूसरा, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, विटामिन के बहुत ज़रूरी है, और मिनरल्स में मैग्नीशियम जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आपकी सेहत बन जाती है, आपके जिस्म के ऊपर गोश्त आने लगता है और आप फिर से मोटे ताज़े यानी कि सेहतमंद होने लगते हैं। तो केसर नेचुरल पाकिस्तान ने ये जो आप लोगों के लिए ताकत प्लस फार्मूला बनाया है, केसर ताकत प्लस,

0: नहीं।
1: ये जो हमारी प्रोडक्ट है केसन ताकत प्लस, ये बेसिकली इन्हीं अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है जो आपको ताकत देंगे। वो जो आप इंजेक्शन, ड्रिप या सिरप या कैप्सूल या गोलियों की सूरत में लेते हैं, वो सिंथेटिकली केमिकलाइज तरीके से फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू आप तक चीज़ें पहुंचती हैं जो डॉक्टर हजरात आपके लिए लिखते हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ कंपनियां ऑर्गेनिक तरीके से भी बनाती हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ तरीके से बनाती हैं, ठीक है जनाब। लेकिन केसन ने आपको ये जो सेहत का फार्मूला दिया है, वही चीज़ें, वही विटामिन, वही मिनरल्स जो आप दूसरे तरीकों से लेते हैं, हम आपको केसन के इस ताकत प्लस फार्मूले के अंदर दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको बी कम्प्लेक्स होल फैमिली, यानी कि जो अज्जा इसके अंदर शामिल है ना, अज्जा, ठीक है जनाब, उनके अंदर यही चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ताकत की जितनी भी चीज़ें होते हैं, ड्रिप हो गई, इंजेक्शन हो गए, गोलियां हो गई, टैबलेट हो गई, ये जो आप लगवाते हैं, ठीक है जनाब, उनके अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया। और केसन का जो ताकत प्लस है उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं ताकत वाली, ठीक है ना। जब आप इसको लेंगे तो आपके अंदर ऐसे ही ताकत आएगी, लेकिन किस तरीके से, वो हम आपको जड़ी बूटियों, मगजियात की सूरत में दे रहे हैं। जो नेचुरल चीज़ें आप इनटेक करेंगे उसके वही बेनिफिट्स, कमजोरी को ख़त्म करने वाले वही आपको मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर अश्वगंधा है, एक जड़ी बूटी है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए, सी और बी पाया जाता है। विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लोग, जो फीमेल हमारी ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगी ना, जिसने भी 3 महीने, जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं है, हड्डियाँ हड्डियाँ हैं, तो जो भी फीमेल, जो भी लड़की हमारा ये फार्मूला केसन ताकत प्लस फार्मूला लेंगे, तो उसकी स्किन भी प्यारी होगी, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। क्रीमों के अंदर भी विटामिन सी होता है, फेस वाशेस के अंदर भी विटामिन सी होता है। तो ये जब आप इंटरनली लेंगे इसको, तो ये और ज़्यादा असरअंदाज होगी। इसके अलावा जनाब, सफ़ेद मूसली जो है, स्टेमिना को और आपकी पावर को बढ़ाने के लिए एक जड़ी बूटी जो शामिल की गई, इसके अंदर विटामिन ई, B1 और B2 पाया जाता है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन के अंदर, सिरप के अंदर, गोलियों के अंदर यही विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, ए, डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से जो बादाम इसके अंदर शामिल हैं, तो उसमें विटामिन ई, B2 और B3 पाया जाता है। पिस्ता जो है उसके अंदर B6, ई, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो काजू है उसके अंदर विटामिन ई, के, B1 और B6 पाया जाता है, ठीक है जनाब। तो जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर। इवन के मैग्नीशियम भी हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर किसी न किसी सूरत में मौजूद है। और मैग्नीशियम जो बड़े फ़ायदे हैं मैग्नीशियम के, दिमाग और नींद को बेहतर बनाने के लिए है, हड्डियों के लिए, पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है जनाब। और दिल और खून की रवानी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हाजमा और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब, केसन के ताकत प्लस फार्मूले के अंदर जो बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ठीक है जनाब, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है कुदरती तौर पर। तो भाई, इस वक्त जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री की तरफ जाएं जो लोगों को सेहत की प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, तो न्यूट्री फैक्टर एक कंपनी है, आप यकीन कीजिए उनके आप चीज़ें उठा के देख लें, इतनी महंगी महंगी हैं यही चीज़ें, हम जो आपको इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, उनके आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की जो है आपको वो 2000 से ऊपर की बोतल मिल रही होती है। तो हमने नेचुरल वे पर आप लोगों के लिए जनाब, डेरा के लोग, चांग के लोग एंड पहाड़पुर के लोग, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट बनाई है। जिस तरीके से हमने बड़ी इज्जत कमाई है, बड़ा नाम कमाया है शिफाय दर्द के अंदर, और लोग हमें पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई कहाँ से, और कह रहा होता है भाई ये आपके पास होता है आयल, भाई ये वाला आयल हमारे रिलेटिव रहते हैं डेरा में, हमारे रिलेटिव रहते हैं पहाड़पुर में, उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत ज़बरदस्त है, ये हमें 2 बोतल भेज दें। यानी कि पूरे पाकिस्तान के हमारी कंपनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज तक हमने जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर भेजी है ना बड़े शहरों में, वो हमारा आयल शैम्पू और ये शिफाय दर्द आयल है, ठीक है जनाब। ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। और मैं, आप आज भी एक बंदे का जो है ऑर्डर आया हुआ था यहाँ से तेमरगरा से, वो 2021 से हमारे प्रोडक्ट भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज भी उनका जो है कुछ 4-5 हज़ार का ऑर्डर था, और उनके हर वक्त ऑयल शैम्पू, आज उन्होंने ग्लूटा के भी साथ में ऑर्डर दिया और साथ में नाइट जफरानी क्रीम का भी ऑर्डर जा रहा था, लेकिन 2021 के इतनी बड़ी स्टोरी है हमारी उनके साथ, और ये एतमाद की स्टोरी होती है, एतमाद की कहानी होती है कि जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बरसों से ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो सामिन कराम, जिस तरह आप लोगों ने मोहब्बत दी हमें केसन शिफाय दर्द के ऊपर, और हमने एक ऐसा आयल बना कर दिया आपको जो कि बहुत तेजी के साथ आपके पट्टों के अंदर जज्ब होता है। ये खूबी है जो शुतुरमुर्ग का तेल है ना, उसकी ये खूबी है कि वो आपकी स्किन की तह के ऊपर ऊपर नहीं रहता है, वो घुस जाता है आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि इस ऑयल की बहुत ज्यादा मुमासलत है इंसानी ऑयल के साथ जो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। तो भाई बहन है जनाब ये दोनों, तो बहुत जल्दी मिलाप हो जाता है इनका, और स्किन के अंदर जाकर जो है मुतासरा जगह पर जाकर क्या करता है जनाब, आपके पट्टों का जो खिंचाव खिंचाव होता है ना, ये खिंचाव की वजह से बूढ़े लोगों को उठने बैठने में मसला होता है, बुजुर्गों को क्यों मसला होता है, पट्टों का खिंचाव होता है, ठीक है जनाब। तो ये जो ऑयल है केसन शिफा दर्द की, मैं बात कर रहा था ताकत फार्मूले की, लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई है कि कितनी प्यारा ऑयल हमने आपको दिया जो कि जिस्म में जाकर उनको क्या करता है, सख्ती जो होती है ना पट्टों की खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हरकत आसानी होती है, खासतौर पर उम्र रसीदा अफराद के अंदर ये मामला होता है, जल्दी के साथ जज्ब होकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचता है। हम कहते हैं ना कि केसन शिफाय दर्द आयल जो है वो जड़ से बीमारी का खात्मा करता है। तो कैसे करता है, जब तक कोई चीज जड़ तक नहीं पहुंचेगी वो खात्मा कैसे करेगी। यही वजह है कि हम स्लोगन लगाते हैं कि आपके आपको दर्द से जो आराम मिलेगा ना वो जड़ से, ठीक है, जब जड़ से आपको आराम मिलेगा। और ये उस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे आयल के अंदर ये खूबी है कि वो पट्टों के अंदर घुस कर वहां पहुंचता है जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर प्रॉब्लम होता है वहीं पहुंच कर आपके मसले का हल करता है। तो भाई वो मैं बात कर रहा था कि इतना प्यारा ऑयल हमने आपको बना कर दिया, इतना प्यारा जबरदस्त हाजमा कंट्रोल सिरप हमने आपको बना कर दिया, इतनी प्यारी फक्की जो आपका वजन कम करती है, केसन वेट कम पेट कम बना कर दी,
0: जिसमें आए
1: और अब वो चीज दे दी आपको जो आपकी जिस्म के अंदर जान डालेगी।

0: बीमारी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
1: जी जनाब, केसन ताकत प्लस और कमजोरी को अलविदा कहना है आपने, और बहुत बर्दाश्त कर ली आपके जिस्म ने ढेर सारी कमजोरियों को, सुस्तियों को। तो अब जनाब वो वक्त आ गया है कि जब आप केसन नेचुरल पाकिस्तान की ये नेचुरल प्रोडक्ट जिसका नाम है केसन ताकत प्लस, हर्बल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, न्यूट्री सप्लीमेंट है, और सादा अल्फाज में आपको ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म का पाउडर की सूरत में है। ठीक है जनाब, एक जार है, उस जार के अंदर ये पाउडर है जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको फक्की भी बोलेंगे, है जनाब, आसान लफ्ज है ना, लेकिन फक्की वो होती है सामिन किराम जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जड़ी बूटियां हों जिसके अंदर, चूंकि इसके अंदर मगजियात हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल है, तो ये सप्लीमेंट कहलाता है ऐसी प्रोडक्ट। क्योंकि जड़ी बूटियां जो होती हैं वो अक्सर जो है मसाइल के लिए होते हैं, एनर्जी के लिए बहुत कम होती हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि एनर्जी की भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं तो इसको हम केसन जो है ताकत प्लस सप्लीमेंट कहते हैं। केसन ताकत भी इसको बोल सकते हैं, केसन ताकत फार्मूला। ठीक है जनाब, तो केसन ताकत प्लस पाउडर की सूरत में है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू, आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे चम्मच निकाल कर मुंह में डालेंगे तो मजा आ जाता है। ठीक है जनाब, सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन सूखा खाना नहीं है आपने, क्योंकि हमने आपको एक वे बताया, और वे ये है कि आपने एक गिलास दूध के अंदर इसके दो चम्मच डालने हैं, उनको मिक्स करके फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके दो तरीकेकार हैं, एक चम्मच आप सुबह ले लें आधे गिलास के साथ, और एक चम्मच रात को ले लें, या फिर आपको दो, आप दोनों चम्मच मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, दोनों चम्मच आप रात को सोने के बाद भी ले सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़बरदस्त हैं, इससे रात को इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट होगा कि जो है बहुत सुकून वाली नींद आपको आएगी। ठीक है जनाब, बहुत मज़े वाली नींद आएगी। सिर्फ ताकत देना काम नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के प्रॉब्लम को, आपके मैदे के मसाइल को भी ये हल करेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था केसन ताकत प्लस जो फार्मूला है तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर 13 अज्जा हैं। ठीक है जनाब, और अगर तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं तो चार चार अज्जा अपना अपना काम करेंगे। एक हिस्सा जो है वो इसका मुश्तमिल है ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। ठीक है जनाब, जो कि फैट्स हैं, फैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके जिस्म को बढ़ाने के लिए। जब फैट्स को आप लेते हैं तो आपका जिस्म भरना शुरू हो जाता है, तो ये प्राइमरी चीज़ है इसकी, इसको हमने ऐड किया। दूसरा, इसके अंदर चार किस्म की बहुत ही ताकत बख्श जड़ी बूटियां हैं। ठीक है जनाब, और आपको दो तीन दिन के इस्तेमाल से ही आपको जिस्म के अंदर एनर्जी महसूस होगी, आपके कमर का दर्द ख़त्म होगा, आपके पट्ठों का दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म के अंदर एक एनर्जी, ये वाजे तौर पर आपको बताएगी कि आपने कोई ताकत वाली चीज़ कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जनाब, तीसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर वो अज़ा शामिल हैं जो आपको भूख लगाएंगे, जो आपकी भूख बढ़ाएंगे, जो आपके निज़ाम इन्हज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, और बहुत ही प्लेटेबल, बहुत ही प्लेजेंट किस्म का, बहुत ही प्यारा और मीठा इसका जायका है। इसके अंदर हल्की सी मिठास भी शामिल है, साथ में वनीला फ्लेवर और इलायची की खुशबू है जो आपको इतना मज़ा देगी कि आप कहेंगे कि यार खलील भाई ने एक गिलास क्यों कहा है, ये तो हर एक घंटे बाद पीना चाहिए। हैं जनाब, इतना इफेक्टिव और इतना प्लेटेबल किस्म का, प्लेजेंट किस्म का इसका फ्लेवर है कि आप खुद बोलेंगे कि भाई ये तो मुझे जो है हर रोज़ जो है हर रोज़ क्या हर घंटे बाद इसको पीना चाहिए। तो मज़ेदार जायके के साथ ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। वो लोग जिनको जिस्मानी कमज़ोरी है, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, यंग लड़की हैं, मैरिड हैं, या फिर बुज़ुर्ग हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में जो इसकी खुराक है वो एक चम्मच डेली है, और वो भी 12 साल से ऊपर, अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं तो इस ताकत प्लस फार्मूले को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और हमें आपने बताना है कि जनाब ये इसकी कीमत है 500 रुपये। ठीक है जनाब, 500 रुपये का ये ताकत प्लस फार्मूला है, और एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ। ठीक है जनाब, दूध के साथ इसको आपने इस्तेमाल करना है।

प्लस फार्मूले के अंदर, और इंशाल्लाह ये बहुत ही कामयाब होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बुज़ुर्ग स्पेशली ऐसे हैं, छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं, ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, यंग नौजवान लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, और वजह क्या होती है? गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी कि अगर आप ऐसी ग़िज़ा नहीं खाते कि जिसके अंदर चर्बी टाइप कोई चीज़ हो, यानी कि फैट्स हों, ठीक है ना, तो आप कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकते। चर्बी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फैट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो ये मगज़ियात हैं, जैसे कि काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, ये सारी चीज़ें जो है ये फैट्स हैं, और जब ये आप इनटेक करेंगे दूध के साथ, तो वो आपके बॉडी के ऊपर गोश्त की सूरत में, ठीक है ना, मसल्स की सूरत में बनेंगे। जिम में जाने वाले जो लोग जिम करते हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मसल्स को सुपर मसल बना सकते हैं, क्योंकि जनाब जो जिम करते हैं जो लोग, वो अपने डोले शोले हैं जी ये बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये मसल तब बनते हैं जब नया गोश्त आपके बॉडी के ऊपर आता है। और जब आप वो करेंगे एक्सरसाइज, आप जिम कर रहे होंगे और साथ में जो है आप केसन ताकत प्लस पी रहे होंगे, तो मसल्स तो आपके बनने ही हैं, फिर शेप आप उनका जो बनाना चाहें, क्योंकि इस प्रोडक्ट का काम जो है आपके जिस्म को भरना है, गोश्त से भरना है, और ये जो अज्जा इसके अंदर पाए गए हैं, ये यकीनी तौर पर कमजोरी का खात्मा करते हैं और आपकी जिस्म के अंदर एक नई जान डालते हैं।

टांग के अंदर जनाब, टांग के अंदर एक तो मंसूर जनरल स्टोर है सदर प्लाजा के अंदर, उसके साथ अरबाब जनरल स्टोर है, उसी के साथ जो है इमरान कॉस्मेटिक स्टोर है। इन तमाम जगहों के ऊपर आपको मिलेगा अल अमारात कॉस्मेटिक स्टोर है, हारून कॉस्मेटिक स्टोर है, और बिलाल मार्केट के अंदर भाई है जनाब नसीम एंड रहीम भाई, वहां पर आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डबरा में जो है इब्राहिम बैटरी एंड सोलर सिस्टम वाले भाई हैं, उनके पास भी सारी चीजें पहुंची हुई हैं, आप उनसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार के अंदर जो है वकास ट्रेडिंग कंपनी वाले भाई हैं, ठेकेदार साहब, उनके पास भी केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा टांग के अंदर छोटे बड़े दुकान के ऊपर केसन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही तो हमारे नंबर पर रब्ता कीजिए 03449363366 03449363366 जी जनाब, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आपके इलाके में अगर प्रोडक्ट हमारी नहीं मिल रही तो हमें जरूर बताइए, हम आपके शहर के अंदर आपके इलाके के अंदर जो है केसन के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को आपके इलाके में पहुंचाएंगे। ठीक है जनाब, रंगपुर के पहाड़पुर के अंदर रंगपुर अड्डे के ऊपर हसीब जनरल स्टोर, हैदर मेडिकल स्टोर एंड अवेस के तीनों के पास हमारी ये ताकत प्लस फार्मूला पहुंच चुका है। इसके अलावा जनाब डेरस मिल खान में अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सीआरबीसी पर वसीम जनरल स्टोर हो गया, या फिर शिवसे चौक के ऊपर जाहिद शॉपिंग सेंटर और मजार वाली गली में उमर जनरल स्टोर है, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। मेन केसन की शॉप जो है अकबर प्लाजा के बिल्कुल पीछे है, आप वहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।

आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो

और बलोची सलाम नज़मान भाई, क्या हाल है? सब ठीक है भाई? आपका आवाज जो है ना वो आज बहुत खराब है भाई, मैं क्या करूँ? इसमें शिवा फ्रॉम चांक शिवा आसमा पूरे बोले जी सो सो सो मसला फिर उगले दो। हाँ और बोलो बच्ची